0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
2: ना ना ना ना ना
3: कैसे हो?

0: Tapi ada banyak lagi lagu untuk anda.
1: Dengarkan kami di Gunung Jerayan 97.5, Bukit Palong Bali 90.5, Bukit Dedap Sik 105.1, Bandar Baru Selamat 88.5, Gunung Raya Langkawi 105.7, Radio Malaysia FM.
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम, तुम।
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
2: ना ना ना ना ना, कैसे हो? किराया